0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
3: आपका अपना रेडियो, रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वो ही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की नशरियात। हमारे साथ
2: कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू। देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी, कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू।

के साथ हम तीन स्टेशन से एक साथ आते थे, लेकिन आजकल जो है रेडियो पैगाम का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से जनाब रेडियो पैगाम पहाड़पुर हमारे साथ जो है ट्रांसमिशन का हिस्सा नहीं होता, लेकिन ग्लोबल FM 91 जैसा इसमें और साथ में जनाब रेडियो

नाना नानी जी जनाब, हर उम्र के लोग रेडियो को सुनते हैं और हर लोग, हर किस्म की उम्र के लोग जनाब हमें सुन रहे होते हैं। तो जनाब सबको मुखातिब करना बहुत ही जरूरी होता है कि जनाब जो जो जहाँ जहाँ हमें सुन रहे हैं, जनाब खलीलदा बेशवान का सलाम आपकी समाधों की नजर, ढेर सारी नेक तमन्नाएं आप सभी लोगों के नाम, ढेर सारा प्यार क्योंकि आप सभी यूजर्स के नाम, लिसनर्स के नाम जो हमारी केसर फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, नेट पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को उन लोगों में शामिल कर रहे हैं जनाब जिनको हम ढेर सारा प्यार कहते हैं। क्योंकि जनाब केसर नेट पाकिस्तान कहती है कि भाई केसर का यही पैगाम है कि प्यारा लगना तो आप सबका हक है। तो जनाब कोई बंदा या बंदी इस पहचान से क्यों आ रही रहे, इस पहचान से क्यों खाली रहे कि कोई उसे

जी जनाब, आवाज अभी उम्मीद है कि बिल्कुल जी ठीक हो चुकी होगी आप लोगों के पास और सही तरीके से मुझे सुन पा रहे हैं कि ड्यूटी ऑफिसर गूगल एफएम 91 में ड्यूटी ऑफिसर टांग वाले मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है जनाब, जैसे मेरी आवाज प्यारी प्यारी सी है वैसी आ रही है या इसमें कुछ खलल रुनुमा हो चुका है, तो जरूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं अपनी मशीनों को इधर उधर करके जनाब अपनी आवाज को ठीक कर सकूं। किसी भाई का या बहन का मैसेज आया कि भाई आज आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, ये कहाँ से था, पहाड़पुर से, सॉरी जीतेन रसमल खान से या फिर टांग से, यानी आओ जनाब ड्यूटी ऑफिसर जब मुझे बताते हैं तो फिर हम उस चीज को सीरियस लेते हैं कि भाई आपके स्टेशन के ऊपर हमारी आवाज कैसी भला कैसी भला कैसी जा रही है, तो उम्मीद है कि जनाब अच्छी जा रही होगी जनाब। और ये प्रोग्राम किसन का टी टाइम जी जनाब, चाय का वक्त होता है जनाब और चाय के वक्त में ही मैं आ जाता हूँ आप लोगों के पास, उम्मीद है कि चाय का घूंट आप भी पीने वाले होंगे जनाब, चाय के एक प्याले के साथ, चाय के एक कप के साथ, टी कप के साथ जनाब, और अगर बिस्किट भी अवेलेबल है तो क्या ही कहने हैं जनाब, क्या ही कहने हैं, तो डेफिनेटली आप चाय को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे गर्मी के अंदर इकलौती चाय जो होती है ना वो भी बहुत ज्यादा मजा करती है जी जनाब। पहाड़पुर वाले जो है वो इस वक्त मुझे जनाब फेसबुक लाइव के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जनाब, जिन लोगों की पहाड़पुर में आवाज नहीं आ रही तो भी लोगों को कमी सी महसूस होती है जब वो हमारी आवाज को नहीं सुन पाते हैं, तो जनाब जो पहाड़पुर वाले हैं वो फेसबुक लाइव के ऊपर आ जाए, वहां पर खलीलताब शाहवान का जो लिंक चल रहा है जी जनाब, वहां पर

आज की दूसरी कंप्लेंट आ चुकी है, लेकिन हमारी ड्यूटी ऑफिसर किधर है यार, आज नोट नहीं कर रहे आप लोग कि मेरी आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। जनाब लोग परेशान हुए पड़े हैं कि भाई आवाज ठीक नहीं आ रही, तो अगर आप मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही तो भाई ड्यूटी ऑफिसर टांग एंड ड्यूटी ऑफिसर डेरा इस्माइल खान मुझे आगाह कीजिए, ताकि मैं आपको एक और लिंक सेंड करूं जिससे आप मुझे लाइव ले सकें और वहां पर जो है आवाज का इशू ना हो। ठीक है जनाब, तो फेसबुक वाले बताएंगे भाई आवाज कैसी आ रही है। डबलिंग आवाज कहती है, कह रहे हैं कि आवाज की डबलिंग आ रही है। अच्छा जी, आवाज की डबलिंग आ रही है, तो क्या अभी अभी अभी अभी अभी अभी के अभी मुझे बताएंगे जनाब अभी आवाज की। जी जनाब, उम्मीद तो है कि इस वक्त जो है मेरी आवाज बिल्कुल जी सही तरीके से आप लोगों के पास पहुंच चुकी होगी। कॉल अभी ना करें जनाब, और शो के बीच में जब आप कॉल करते हैं तो फिर हमें डिस्टर्बेंस होती है और हम अपनी बात जो है पूरी नहीं कर पाते हैं। जनाब आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे टांग वाले। अच्छा जी, टांग वालों का आज मैंने शुक्रिया अदा करना है भाई, ढेर सारा शुक्रिया। मुझे जो रिपोर्ट मिली है ना आज, टांग की जो रिपोर्ट मिली है वो कितनी जो है सेहतमंद थी आप सोच नहीं सकते। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, अल्लाह ताला हसद करने वालों से बचाए, अल्लाह ताला हसद के शर से हमें महफूज रखे। ठीक है जनाब, की कितना प्यार केसन को मिल रहा है टांग के एरिया से। ठीक है जनाब, टांग से कितने लोग

आती है, अगर डिस्टर्बेंस हो जाए ना सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अपनी आवाज अगर प्रॉब्लम आपकी तरफ चल रहा है सो जी अगर आपकी तरफ इशू है तो भाई 90 88.4 वालों ट्रांस के जो ड्यूटी ऑफिसर है भाई अगर आवाज के अंदर इशू है डबलिंग है तो इस लिंक के ऊपर जाइएगा, ठीक है जनाब। आई हैव सेंड टू यू पीपल और इसको चेक कीजिए और इसके ऊपर जाइए, ठीक है जनाब। और ईगो आ रही है, ऐसे जी ग्लोबल एफएम 91 वाले कह रहे हैं कि ईगो आ रही है। अभी कैसी है इमरान बताइए कि मुझे, अगर ईगो का इशू है तो फिर इधर चले जाइए। अच्छा जी बिल्कुल जी, ये इश्यू जो है वो हमारी वेबसाइट से आज आ रहा है, तो भाई दोनों जो हैं क्या नाम है ग्लोबल एफएम 91 वाले और टांग वाले दोनों जनाब इस लिंक के ऊपर जाएं जो मैंने आपको अभी सेंड किया है, ठीक है जनाब। यहाँ से

जनाब, इस तोड़ का एक ही हल है और ये शोर होता है जो बदहजमी का, स्पेशली आपको पता है कि गर्मी के अंदर। अच्छा, पहले मैं आपको 5 प्रोडक्ट बता दूं जिनके ऊपर आप लोगों का ढेर सारा प्यार हमें मिला है। नंबर 1 शिफाए दर्द, नंबर 2 हमारी प्रोडक्ट जो है क्या नाम है उसका जनाब, शिफाए दर्द हमारा जो प्रोडक्ट है जो कि पेन किलर हमारा ऑयल है, और दूसरी प्रोडक्ट जो हमारी है जनाब वो ये हाजमा कंट्रोल सिरप, चौथी प्रोडक्ट हमारा केसन हेयर ऑयल और 5वां केसन शैम्पू। इसके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर भी आपके ढेर सारा प्यार, जैसे कि जाफरानी साबन, मिल्की सोप, जैसे कि हमारे फेस वॉश गो पिंपल लवली फेस वॉश, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोगों का बेतहाशा प्यार और डिमांडिंग प्रोडक्ट बन गए हैं जनाब, और ऐसा लगता है जैसे ये कंपनी सालों से इधर काम कर रही थी और एक महीने के अंदर आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया है हमें उसका हम दिल से शुक्र गुजार हैं आप लोगों के लिए जनाब, एंड उम्मीद करते हैं कि इसी मोहब्बत को आप दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर भी निछावर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई केसन के पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और जैसे कि गर्मियां हैं तो गर्मी के अंदर बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि गर्मी के अंदर ज़ाफ़रानी रेंज का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप ज़ाफ़रानी साबन और क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो दिन के वक्त जो खतरनाक शुआएं आपके चेहरे को नुकसान पहुंचाती हैं वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है जनाब, उनका असर खत्म हो जाता है जब आप ज़ाफ़रानी साबन इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी घर टांग के अंदर डेरा के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है जनाब, ये नेचुरल सन ब्लॉक है जो ज़ाफ़रान है ना, ये नेचुरल सन ब्लॉक है। घर से निकले तो ज़ाफ़रानी साबन से चेहरा धोकर निकले, ठीक है जनाब, और वापसी पर जब घर लौटे तब भी इसका इस्तेमाल करें, जाते हुए ये आपको धूप की तपेश से बचाएगा, और वापसी के ऊपर अगर उन शुआओं से कहीं आपको थोड़ा बहुत असर हुआ नुकसान हुआ है तो उस असर को खत्म करेगा, ठीक है जनाब। तो ये ज़ाफ़रानी सोप का फायदा है। इसके अलावा ये जो हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप है जनाब, ये भी गर्मियों की प्रोडक्ट है, और इसमें ये गर्मी के अंदर क्यों मैदे वाले प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं हाजमे वाले सिरप, अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, ये भाई मैदा और हाजमा एक चीजें होती हैं, ठीक है जनाब। उस दिन एक बंदा आया, उसने कहा यार मेरा मैदे का बड़ा मसला है, तो मैंने कहा भाई हमारे पास हाजमा कंट्रोल सिर्फ, कहते वो तो हाजमे के लिए नहीं है, तो मैंने कहा मैदा और हाजमा क्या अलहदा चीजें हैं? मैदा वो आपका उज्व है जहां पर यह हाजमा होता है, ठीक है जनाब, मैदे के साथ ही रिलेट करता है ना, ठीक है जनाब, मैदा वो आपका उज्व है जहां पर ये हाजमा हो रहा होता है, तो ये बेसिकली मैदे के लिए है, मैदे के जितने भी मसाइल हैं उनके लिए हमारा ये सिरप है जिसको हम कहते हैं केसन हाजमा कंट्रोल सिरप।

जी जनाब, कैसे हाजमा कंट्रोल? सिर्फ गर्मी के अंदर जो होता है ना जनाब, गर्मी के अंदर हाजमे वाला सिरप और हाजमे की जो दवाएं होती है ना, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, और इसकी वजह होती है, आपने कभी नोट किया है कि सर्दियों के अंदर जब आप सालन रखते हैं बगैर फ्रीजर के, बगैर फ्रिज के भी रख दें तो खराब नहीं होता है, लेकिन गर्मी के अंदर अगर 2-3 घंटे, ठीक है जनाब, 2-3 घंटे ऐसा हो कि जनाब आप खाना बाहर रख दें तो खाना आपका खराब हो जाता है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? सर्दियों में तो ये नहीं होता, गर्मियों में ऐसा क्या हो जाता है कि जनाब खाना जो होता है वो खराब हो जाता है? तो इसकी वजह होती है जनाब कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो गर्मी के अंदर जो होता है ना, गर्मी के अंदर उनकी पैदावार बहुत जल्दी होती है, यानी कि जरासीम बहुत जल्दी से पैदा होते हैं गर्मी के अंदर, ठीक है जनाब, जिसकी वजह से आपके खाने भी खराब हो जाते हैं, खट्टे बन जाते हैं, दूध खराब हो जाता है, खाने खराब हो जाते हैं। इसी तरीके से जरासीम जो आपके मैदे के अंदर होते हैं, ठीक है जनाब, उनकी मिकदार भी बहुत बढ़ जाती है, और आपके लिए जो प्रॉब्लम होते हैं वो

डे बाय डे गर्मी और सर्दियों की निस्बत गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन मसाइल से हल के लिए जनाब क्या ये प्रोडक्ट ये आपके हेल्थ के हवाले से, जैसे चेहरे के लिए बताते हैं कि आपको जाफरानी साबुन जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से मैदे को ठीक रखने के लिए, हाजमा ठीक रहे, ना ही आपको जो है हैजे का मसला हो, ना कोई और मसला हो, ना ही आपको जलन हो, तो जनाब आप हमारी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो केसन हाजमा कंट्रोल सिरप के नाम से मौजूद है। ये गर्मियों की प्रोडक्ट स्पेशली, ठीक है जनाब, गर्मी में मैदा बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है और उसका हल क्या है, केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप। बाजार में बहुत सारे आपको हाजमा कंट्रोल सिरप मिलते हैं, मैदे वाले सिरप मिलते हैं जो डॉक्टर लिखते हैं, हकीम लिखते हैं, लेकिन प्राइस में बहुत महंगे होते हैं, ठीक है जनाब। ये आपको 150 तक मिलता है और आप एक दफ़ा पियेंगे तो इंशाल्लाह अपने घर के अंदर इस जैसा कोई और सिरप ले के बिल्कुल भी नहीं आएंगे। गर्मी का एक और मसला होता है जनाब, बदबू पसीने की।

जी जनाब, गर्मियों की पसीने के बदबू को बहुत सारे लोगों को पसीना जब आता है तो बहुत ही बुरी स्मेल होती है और लोग इतरा रहे होते हैं उससे। अगर आपको भी बहुत ज्यादा पसीना आता है और स्मेल वाला पसीना आता है तो भाई हमारे ये दो परफ्यूम है, एक का नाम अकबर है और एक का नाम जारा है। ठीक है जनाब, जारा जो है वो खवातीन के लिए स्पेशली बनाया गया क्योंकि ये फूलों की खुशबू है, और जो अकबर है वो थोड़ा सा रोब वाली प्रोडक्ट है हमारा, मर्दों के लिए है अकबर और जारा। अच्छा जी, इनके बड़े पैक जो है वो आपको 1500-1500 का मिलता है, लेकिन इनके हमने पेन परफ्यूम भी बनाए हुए हैं केसन अकबर एंड जारा के। यानी कि अगर आप पहले इनको टेस्ट करना चाहें कि भाई इनकी खुशबू है कैसी और ये कितनी देर रहती है, तो आप हमारे ये परफ्यूम बाजार से ले सकते हैं, सिर्फ 250 रुपए का एक है।

0: परफ्यूम्स, वल्ला लाजवाब,
1: वल्ला लाजवाब। जी जनाब, वल्ला लाजवाब है ये हमारे परफ्यूम। और ये परफ्यूम, इतने अच्छे परफ्यूम हमने आपको फ्री दिए हैं, ठीक है जनाब। दांत वालों ने अपनी मोहब्बत का कर्ज चुका दिया है इतनी अच्छी सपोर्ट करके, और मेरा दिल कर रहा है कि कोई और अच्छा सा पैकेज भी टांक वालों के लिए स्पेशली अनाउंस कर दूं, कि इतनी ज्यादा मोहब्बत हमें टांक वालों से मिल रही है। और ये परफ्यूम अकबर और जारा, हमने पहले जब कंपनी लॉन्च की थी तो ये एक एक परफ्यूम और एक जाफरानी साबन आप लोगों को फ्री दिया था, और सिर्फ इसी वजह से दिया था कि आगे गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों में ये दो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगे अपने अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, स्मेल से पाक रखने के लिए। अकबर या जारा परफ्यूम आप खरीदें जो कि 250 रुपए का आपको मिलता है। ये 10 ml का हमारा पेन परफ्यूम है, ठीक है जनाब। आप अपने पर्स में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, कहीं शादी पर जा रहे हैं, कोई भी इवेंट है तो जनाब अपने जेब में रख सकते हैं। ये सिर्फ 250 रुपए का है। बहुत सारे लोगों ने ये हासिल किया फ्री में, उनको बहुत मुबारक हो। और अभी वो इस्तेमाल कर रहे होंगे कि कितनी मशहूर कौन खुशबुएं हैं केसन के, अकबर और जहरा परफ्यूम के।

0: परफ्यूम्स वल्ला
1: लाजवाब। और बिल्कुल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा। एनी जी, बहुत शुक्रिया सभी लोगों का हमारे प्रोडक्ट्स को, स्पेशली मैं टांग वालों का शुक्र गुजार हूँ। इसके अलावा डेरा स्मिल खान वाले भी बहुत शुक्रिया, स्पेशली ये जो जफराबाद का इलाका है भाई, ये नोट कर लें भाई, केसन के प्रोडक्ट आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं। एक तो हाजी जरी जनरल स्टोर है, दूसरा अल फैसल मार्केट के अंदर है जनाब, क्या नाम है उनका, जी बिल्कुल अब्दुल रहमान जनरल स्टोर। तो आप वहां से भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, अब्दुल रहमान जनरल स्टोर अल फैसल मार्केट। इसके अलावा हाजी जरी है, इसके अलावा छोटी मोटी और दुकानें भी हैं जहां पर हमारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, जिन्हें आप खरीद करके जनाब अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं, खुद को प्यारा बना रहे हैं, और स्पेशली जनाब इतने पुराने दर्दों का आप खात्मा कर रहे हैं जो इतने अरसे से आप लेके चल रहे थे, जोड़ों का दर्द।

0: अच्छा जनाब, ये जो हमारी प्रोडक्ट है ना शिफाए दर्द, ये माशाल्लाह बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। डियर सुल खान पहाड़पुर में तो पॉपुलर थी, लेकिन टांक में एक महीने के अंदर यानी कि इतनी पॉपुलरिटी इस प्रोडक्ट की इतने जल्दी हमने कहीं नहीं देखी। ठीक है ना, प्रोडक्ट तो हम लॉन्च करते हैं, पहले डेरा में लॉन्च की, फिर पहाड़पुर में, अभी टांग में, लेकिन इतने ज्यादा यूजर अगर किसी इलाके में बने हैं तो वो टांग का एरिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, इसका मैकेनिज्म दो तरह से है। कुछ ऐसे लोग जिनको बहुत पुराने और बहुत ही पुराने किस्म के, बहुत ही पुराने उनको दर्द हैं, उसमें जब ये स्टार्ट में आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो स्टार्ट में हम ये कहते हैं कि स्टार्ट में एकदम आप मेडिसिन को ना छोड़ें। ठीक है जनाब, इसको जैसे एक दो दिन आप यूज करेंगे तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करें, जो मामूली दर्द होते हैं ना, मामूली दर्द, मौज आ गई, ठीक है जनाब, गिर पड़े, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, वो तो आपके एक दिन के अंदर ये दर्द को खत्म कर देगा। लेकिन जिनके पुराने बहुत दर्द होते हैं, ठीक है जनाब, अब वो क्या तरीका इख्तियार करेंगे, वो मैं तो बहुत सारे लोग मेडिसिन छोड़ भी देते हैं, कहते हैं यार मेडिसिन भी यूज नहीं करें, लेकिन हम आपको एक प्रॉपर तरीका बता रहे हैं। अगर इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आप हमें दुआएं देंगे। बिल्कुल, जब आप इसको यानी कि आपका मकसद तो यही है कि आपने आपने दवाइयों से जान छुड़वानी है ना, ठीक है जनाब, तो आपने करना क्या है कि जैसे आपको मेडिसिन यानी कि अर्थराइटिस के आप केस हैं, ठीक है जनाब, आप बैकेक का आपको मसला रहता है बहुत अरसे से, या जोड़ों का दर्द, या कमर का दर्द, या पट्टों का दर्द, कोई भी आपको पुराना सा मसला चल रहा है, इसको आप मेडिसिन के साथ कंटिन्यू करें, ठीक है जनाब। लेकिन दो दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, आपका दिल नहीं करेगा। यानी कि अगर पहले आप सुबह शाम टैबलेट खाते थे तो दो दिन के बाद आपको लगेगा कि टैबलेट एक टाइम नहीं खानी चाहिए, आप छोड़ दें, ठीक है जनाब, दो तीन दिन और आप इसे ऐड करेंगे, क्योंकि ये आयल जो है ना थोड़ा सा वक्त लेता है, ठीक है जनाब, क्योंकि इसने आपके दर्द को जड़ से खत्म करना होता है ना। ये जो मेडिसिन होती है ना, ये टेम्परेरी वर्क होता है इनका, और इसने सिर्फ आपके जो मैसेजेस दिमाग को जा रहे होते हैं उसको इसने ब्लॉक करना होता है, और इसका कोई काम नहीं होता। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये जड़ से काम करता है, कमजोर पट्टे हैं तो उनको मजबूत करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेचुरल तरीके से अगर अंदर जो है हड्डियों के अंदर सूजन है, सोजिश है, तो उसको ये नेचुरल तरीके के ऊपर सेट करेगा, उसको काम करेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो कुछ लोग ऐसा है कि बिल्कुल एकदम से दवाइयां छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी ना करें, लेकिन वही दवाई आपकी दो दिन बाद, तीन दिन बाद छूट जाएगी, जैसे ही ये अपना काम यानी कि ये पेनिट्रेट होकर, जैसे आप पट्टों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जोड़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे, अर्थराइटिस की पेशेंट है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर फाले या लकवा की इस तरह केसेस में, या फिर आसाब की कमजोरी है, कोई बाजू आपका है बिल्कुल जान नहीं है उसके अंदर, या फिर आपका एक कंधा है जो कि बिल्कुल हिल नहीं सकता, यानी कि फ्रोजन शोल्डर है, तो इस सूरत हाल के अंदर आपने क्या करना है कि आपकी मेडिसिन खत्म हो जाएगी। ये हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं, जैसे आप इस आयल को इस्तेमाल करेंगे आपकी जिंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा, टैबलेट से जान छूट जाएगी, आपके मैदे की खराबी है दूर, आपकी जिगर की खराबी दूर, आपके जनाब जितने भी मसाले वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आप एक नई जिंदगी जी रहे होंगे। केसन के केसन की इसके प्रोडक्ट जिसको हम शिफा दर्द कहते हैं। अच्छा, ये जब हमने प्रोडक्ट डेर असमल खान में लॉन्च की थी ना तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, फिर एक कंपनी ना इसकी कापी बना ली, एक कंपनी ने इसकी कापी बना ली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर, हर बंदा ये आयल मांगता था, हर बंदा शिफा दर्द, तो उन्होंने इससे मिलता जुलता नाम एक रख लिया। डेर असमल खान की बात कर रहा हूँ, लेकिन वही प्रोडक्ट अब पहाड़पुर में भी है, टांग में भी है। तो क्या है, दुकानदार धोखा दे जाते हैं, क्योंकि हल्की चीज के अंदर कंपनी बचत बहुत देती है दुकानदार को। हम यकीन कीजिए कि हमारे शिफाए दर्द के अंदर दुकानदार को मुश्किल से 50-60 रुपए बचते होंगे, और जो 300-400 का वो होता है उसके अंदर उनको 200-200 रुपए भी बच रहे होते हैं। तो बहुत सारे दुकानदार लालची भी होते हैं, वो कहते हैं चलो यार ये 50 रुपए वाली क्यों बेचें, 200 वाली बेचें। तो आपने नकालों से होशियार रहना है। मुसर्रत आपा हमारी आरजे हैं डेर असमल खान में, वो उन्होंने मुझे उस दिन कॉल की कि बेटा मैंने ना फरूक एक स्टोर है यहाँ पर, कि वहाँ पर जाकर मैंने आपका आयल शैम्पू और तेल ले लिया शिफाए दर्द। तो उसने मुझे नाम और बताया, तो मैंने कहा ये तो हमारा नहीं, कहते उसने फिर मुझे क्यों दिया, तो मैंने कहा अब ये तो उसने गलती की है। तो उन्होंने क्या किया है कि हमारे ऑयल जैसी डब्बी बना दी है, जो चीज़ें हमने लिखी हुई हैं वही चीज़ें लिख दी हैं। तो आपने करना क्या है कि हमारी जो निशानी है शिफाए दर्द, असली जो शिफाए दर्द है उसकी ये निशानी है कि एक तो हमारा जो बॉक्स होगा ना वो सील वाला होगा, उसके ऊपर सील लगी होगी। बगैर सील वाला बॉक्स आप ना, कहीं पर भी अगर कोई डब्बी पड़ी है ना जिसकी सील नहीं है, आपने वो तेल नहीं खरीदना, ठीक है जनाब। हम जो तेल भेजते हैं शुतुरमुर्ग का तेल, वो सील होती है उसके ऊपर, केसन की अपनी सील लगी होती है, आप सील हटाएंगे तब जाके बोतल निकलेगी। अगर आपको बगैर सील वाला कोई तेल मिल रहा है तो आपने नहीं खरीदना, ठीक है जनाब। दूसरी निशानी ये है कि हमारे जो शिफायदार तेल है उसके ऊपर शुतुरमुर्ग की तस्वीर बनी हुई है पीली। आपने क्या नोट करना है, दो चीजें, एक तो आपने तेल के ऊपर सील देखनी है, सील लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, नहीं लगी हुई आपने नहीं खरीदना बिल्कुल भी, ठीक है जनाब। कुछ भी हो जाए आपने नहीं खरीदना, दो नंबरें बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है जनाब। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि इसके ऊपर शुतुरमुर्ग की तस्वीर बनी हुई होगी, शुतुरमुर्ग की तस्वीर बनी हुई होगी और ये 700 रुपए का है। जो हल्के वाले हैं वो 400 रुपए के हैं। हमारी तीन निशानियां हैं, एक तो 700 रुपए का है, दूसरा सील होगी, तीसरा इसके ऊपर शुतुरमुर्ग की तस्वीर बनी हुई होगी, ठीक है जनाब। तो ये निशानियां हैं हमारे जनाब ऑयल की, और इसलिए बताते हैं कि आप तक जो है खालिस चीज पहुंच सके।
1: हर जख्म
0: तो हमने आप लोगों के लिए बनाई है, जो आपकी

जनाब शिफा दर्द की बात कर रहे हैं और आपके शहर टांग में डिरसपुर खान में हर जगह मौजूद है। और आज तासीर भाई ने आना था, वैसे प्रोग्राम तासीर भाई का था, लेकिन आज उनके घर में कोई मसरूफियत है जिसकी वजह से वो आज प्रोग्राम के लिए नहीं आ सके। अदरवाइज ये तीन दिन जो है हमने तासीर भाई के नाम किए हुए हैं, जुमा, हफ्ता और इतवार जो है, हो सकता है कल वो आपको ज्वाइन करें। अगर उनकी मसरूफियत ख़त्म हो गई तो डेफिनेटली वो आपको कल ज्वाइन करेंगे। हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस वक्त, और हमें कॉल करने के लिए हमारा जो नंबर है, जो कॉन्टेक्ट नंबर है, वो है 03449363366, 03449363366। ठीक जनाब, ये टेलीनॉर का नंबर है। इसके अलावा दूसरा हमारा नंबर 03137945454, इन दोनों नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आज जुमा का दिन है, तो जनाब जुमा का मुबारक दिन आप सभी सुनने वालों को, डेर असमिल खान और टाक समेत तमाम लिसनर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद है कि आज का दिन आपको बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि जनाब जुमे का दिन, छुट्टी का दिन, साफ सुथरे होकर जनाब, खुशबू लगाकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर एंजॉय करने का दिन होता है। तो जनाब आते हुए भूल गया, लेकिन जुमा के दिन तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जिसके ऊपर आप हमसे रब्ते कर रहे हैं 03449363366

0: जनाब डेरेसविल खान में हमारे जो जी जनाब हम डेरेसविल खान में हमारे जो शुरू से सेल पॉइंट आ रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग हमें जो डियाल रोड के ऊपर, सीआरबीसी के ऊपर या फिर यूसुफ चौक के आसपास सुन रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे तीन बड़े सेल पॉइंट हैं इस एरिया के अंदर, जैसे कि महमूद जनरल स्टोर, जैसे कि जाहिद शॉपिंग सेंटर और जैसे कि जनाब मजार वाली गली में उमर जनरल स्टोर। ये जो है बिल्कुल जनाब, आप इनसे हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। ग्रीड रोड के ऊपर जो है ताहा बेकर्स है, तो आप यहाँ से भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनको मौका दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ सोनिया भी आ चुकी हैं।
1: जी
0: नहीं, आप तो माशाल्लाह हमारे केसर शॉप के ऊपर ही आती हैं, लेकिन ताहा बेकर तो आपके करीब पड़ता है ना, आपकी कास्ट भी है मेरे ख्याल में उनके साथ मिलती जुलती, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आप उन्हें छोड़कर केसर शॉप पर आते हैं। वो ही खड़े होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो जी, भाई की शॉप से आ खरीदती हैं, अच्छी बात है। और सुनाए कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीन प्रोडक्ट जो है, बल्कि पांच प्रोडक्ट, जिनको टांग वालों ने बेहद पसंद कर लिया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप?
1: वो अच्छे थे तो पसंद
0: किया। जरूरी बात है, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट भाई जिनका ताल्लुक सेहत के साथ है, ठीक है ना। और जो सेहत वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, वो बहुत टफ प्रोडक्ट होते हैं, उनका रिजल्ट मिलना जरूरी होता है। साबुन हो गए, क्रीम हो गए, शैम्पू हो गए, तेल हो गए, ये तो इतने को बड़े मसले नहीं होते ना, ये मसले तो नहीं होते, हम तो खुद इनको यूज कर रहे होते हैं, लेकिन असल चीज है कि किसी बीमारी के लिए कोई चीज आप इस्तेमाल करें और उसमें 100% जो है आपको रिजल्ट मिल जाए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उनको शिफा भी मिल गई है, और इंशाल्लाह अगले महीने हम आपको बता रहे होंगे इससे और अच्छी रिपोर्ट सामने आएगी कि भाई पहले 100 लोग थे तो अभी 200 लोग हो गए हैं। और आपके इस्तेमाल में आजकल क्या चल रहा है वैसे केसन का?
1: केसन भी चल रहा है, शैम्पू और साबुन।
0: अच्छा, जाफरानी साबुन को आपने, जाफरानी साबुन को आपने ये कह दिया कि ये गर्मी का तोड़ यही है भाई, जाफरानी साबुन।
1: बिल्कुल हाँ है, मैं रात को तो यकीन जब सोने से पहले ना जब उसको करती तो मैं उसे जरूर इस्तेमाल करती हूँ, सुबह को भी।
0: सुबह को दो दफा आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपको मजा आ रहा है कि कोई काम की चीज इस्तेमाल कर रही
1: है? क्योंकि स्किन जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है, पसीना नहीं आता ना,
0: पसीना नहीं है, स्वेटिंग नहीं होती बिल्कुल। इसके अंदर जो संदल है ना, संदल कुदरती तौर पर स्किन के ऑयल को कंट्रोल करता है।
1: और भाई सब सुनने वालों
0: को, और क्या कह रही थी जी जनाब, हमारा नंबर नोमी कह रहे हैं कि सर जी नंबर बता दे, तो नंबर है जनाब 03449363366, यानी कि 03449363366। इस नंबर पर आप लोगों को

0: 03449366666 के ऊपर एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल जी ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ? अपना नाम बताएंगे जनाब, अपनी पहचान कराएंगे, अपना नाम बताएंगे।
1: नौमी मजबूर बात कर रहा हूँ।
0: नौमी मजबूर, नौमी मजबूर वो बंदा है जिसने केसन की प्रोडक्ट को प्रमोट करने का बिड़ा उठाया। नौमी
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कौन सी प्रोडक्ट थी वो केसन की? और याद है जब हमने इसके स्टॉल लगाए थे
1: जी,
0: तो माशाल्लाह उसी कंपनी के साथ आप जुड़े हुए और उस जर्नी को आप देख रहे हैं, एक प्रोडक्ट से स्टार्ट होने वाली कंपनी।
1: जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है इंशाल्लाह। एक दिन तो बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं जाती,
0: रायगा नहीं जाती, जाया नहीं जाती। और इसी उम्मीद के साथ अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल है और आज इतना बड़ा एम्पायर हमने खड़ा कर दिया और जो प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं भाई वो ब्रांड बनता जा रहा है। नौमी
1: अल्हम्दुलिल्लाह वो इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा बनेगा। आपने ऊपर लिखा हुआ है कि टी टाइम,
0: हाँ,
1: और हम इससे हम दिया रहा है दूध वाले शरबत। तो
0: ये गर्मियों में कुछ दिन होते हैं जब टी को छोड़कर बंदा शरबत पीता है, लेकिन ये होता टी टाइम है, ये होता टी टाइम है, चाय का वक्त होता है, 3 से लेकर 5 के दरमियान जो है वो चाय पी जाती है। नहीं तो आप क्या पूरे गर्मियां चाय नहीं पीते हो, शरबत पीते हो?
1: नहीं हम चाय भी पीते हैं लेकिन बस ऐसा करें कि शरबत हमें मिल गया, अभी टी जो है वो केसन की तरफ से आ जाए।
0: अच्छा टी केसन की तरफ से आ जाए, वाह वाह। लोग तो कहते हैं भाई आपने टी टाइम बनाया तो चाय पत्ती भी लॉन्च कर दें केसन की।
1: नहीं हम कहते हैं कि ये भी केसन की तरफ से आ जाए।
0: अच्छा ये भी कैसा, हम हाजिर हैं जनाब, आएंगे कल आप तो आज।
1: और अगर और कुछ ना आए तो फिर ये तो हो सकता है ना कि
0: यही लोग जब से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है तो लोग कहते हैं केसन की टी भी होनी चाहिए। अच्छा नौमी मुझे एक बात बताएं, आपका ताल्लुक सेल्स की टीम से है, सेल्स मार्केटिंग के है, टांग भी आप जाते रहते हैं तो टांग के लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं ना?
1: तो
0: अच्छा तो देखिए मुझे तो दुकानदारों के नाम नहीं आते, मुझे पता है कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने हर दुकान के ऊपर केसन के प्रोडक्ट पहुंचा दिए होंगे, लेकिन आप कोई खास 5 दुकानदारों के नाम बता सकते हैं जहां पर आपने केसन के प्रोडक्ट देखे भी हों, वहां पर पड़े भी हों और लोग खरीद भी रहे हों ताकि और आसानी के साथ आसानी हो जाए? अफसर खान प्लाजा में भी देखा है और कहाँ देखा है?
1: सदर प्लाजा में भी देखा है।
0: ठीक है
1: जी। और प्लाजा में तो ही बैठा हुआ है।
0: हाँ
1: तो वो तो मिलते हैं।
0: हाँ वो तो मेन हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटर है तो डेफिनेटली वो तो होता है, तो मतलब ये
1: और बिलाल मार्केट से भी आपके केसन मिल जाएगा।
0: बिलाल मार्केट में वहाँ पर भी कोई दुकाने हैं वहाँ पर बिलाल मार्केट में? नसीम मेरे ख्याल में उधर ही है। नसीम
1: जी नसीम उधर ही बैठा हुआ है बिलाल मार्केट।
0: नसीम बिलाल मार्केट कहाँ हो जाती है, शहर के अंदर है या बाहर है, कहाँ? सदर प्लाजा के आसपास है, सदाम के कहाँ पर?
1: जी उधर ही है, बस ये जो नीचे बाजार जा रहा है ना, सदर प्लाजा के सामने जो नीचे बाजार जा रहा है,
0: ठीक है,
1: उसमें आगे जाके बिलाल मार्केट पता कर लें।
0: मशहूर मार्केट है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने आज हमारी हेल्प कर दी टांग के लोगों को। वैसे पता है लेकिन अब इन जगहों से भी हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक हो गया नौमी मजबूर,
1: थैंक यू सर। टांग वालों, पहाड़पुर वाले और चलो तेरे वालों को भी सलाम कहते
0: हैं। तेरे वालों को सलाम, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नौमी मजबूर हमारे साथ है और नौमी मजबूर जो है टांग वालों को नए नए लग रहे होंगे, डेरे वाले इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, डेरे वालों को बताने की जरूरत नहीं है कि नौमी मजबूर, हु इज नौमी मजबूर। लेकिन टांग वालों को जनाब ये वो बंदा है, सेल्स की टीम से इसका है और स्टार्ट में जब केसन लॉन्च हुई थी तो ये और हसनैन मार्केट में अगर प्रमोट करने वाले थे तो यही दो बंदे थे, तो ये उस वक्त

0: हमारे साथी हैं और आज भी ये किसी और कंपनी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन केसन के साथ इनकी मोहब्बत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और हमेशा हमें सपोर्ट करते रहते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं। और हमारे प्रोडक्ट नहीं होते हैं तो हमें आगाह करते हैं कि यहाँ पर आपके लोग मांग रहे हैं। ठीक है जनाब। और रईस खान कह रहे हैं कि भाई आप तो आवाज बिल्कुल ठीक हो गई है। खालिद भी कह रहे हैं कि 91 पर भी आपकी आवाज बिल्कुल जी ठीक हो गई है। अच्छा जी, दिलराज ये उस दिन अताउल्ला भाई एक थे टांग से, वो जो कह रहे थे कि भाई मुझे आपकी वेट कम पेट कम ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिया है। मैंने आपके साथ उनका नंबर भी शेयर किया था, मैंने कहा अगर आपको इनसे बात करनी पड़े तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने किस तरह इस्तेमाल किया वेट कम को, कितना वजन था, कितना कम हुआ। ठीक है, एक और हमारी बहन थी टांग में जिनका नाम है दिलराज। ठीक है जनाब, दिलराज उनका नाम है और उन्होंने कहा था कि भाई मैं वेट कम पेट कम ले रही हूँ और आपके साथ इसका रिजल्ट शेयर करूंगी। आज उनका भी रिजल्ट आ गया है और यूं समझ लें कि एक और शहादत आ गई है वेट कम पेट कम की। एक कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील, रखे हाल
0: है? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। नान से सुसेपना गरम करे सो कैम बर्तन जिनके ना थोड़ी जा 8-10 कतरे सट के थोड़ा जा गरम करे सो गरम जिसम दो लासो तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। ठीक है, इस्तेमाल करो इवें थोड़ा जो नीम गरम करके। ठीक है सही, चेल सट के इतने तक मालिश करो कि मुकम्मल तौर से जिसम में जज्ब थी वजे। ठीक है सही, उन्दे बाद छोड़ दो। ठीक है, कपड़े को ढांपण सर्दियों चार कि कपड़े ना ढांप छोड़ो ना, लेकिन आजकल चूंकि गर्मी है तो ढांपण की जरूरत को नहीं, लेकिन अगर एसी दी बैठे हुए या ठंडे पखे की आवाज से बैठे हुए कूलर दगो तो वह तू झा को ढांपना जरूरी है। जनाब टांग से थे। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था शहादतों की, शहादतों का सिलसिला जारी है ना टांग से, स्पेशली जो बात कर रहे हैं कि टांग वालों को कैसे शिफा मिलती। दिलराज बहन जो थी उन्होंने ली थी जनाब वेट कम पेट कम और कहते हैं कि आज 12वां दिन है। ओह माय गॉड, हम कहते हैं कि 15 दिन के अंदर इसके रिजल्ट हैं, ये कहते हैं कि आज मुझे जो है 12 दिन हो गए हैं। क्या रिजल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले शबरा उस्ताद के इससे हमारे साथ हैं, आखिरी मिनट में हमें ज्वाइन किया है जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम खलील भाई, प्रोग्राम सुन के बड़ी खुशी चाहिए क्योंकि एक कता नहीं आता पिया, लेकिन इकानवे दाता बंदो बस की थी पहन थी नजर है ना और लई पे त्री पंजी थ्री फुट ते चार के ठीक लीड लई पे जदि वजह को लगता है प्रोग्राम मिस रखे फॉर पूरा लंदी तरफ को चलो ऐसा नुमाइंदगी कर
0: लो जी। बहुत मेहरबानी से ही शुक्रिया, इतनी मुश्किल नाल भी तुसे सब कुछ सुनदे पेवे, मोहब्बत ना सुनदे पेवे तो
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे टाक करम भैया कोई ऐसा अगर जीता जीता है कोई वीकनेस इन्हों की आवाज की वीकनेस आती पी है तो जी चार्जर वाला पिछू जी लीड है ना लीड वो अपने मोबाइल के चार्जिंग लवीद है वो करके जरा स्विच लावा वो जुदा पकड़ो वो लीड लड़का छोड़े तो यह आसानी न साफ नहीं सुनी
0: जावा क्या बात
2: है बाकी दर्द बिल्कुल अल्लाह पाक जरा भाई आधा पिया था इंशाल्लाह दवाइयां रखी अल्लाह पहले सफाए दर्द इस्तेमाल करो कामयाब।
0: बहुत शुक्रिया जनाब। और ये कह रही है जनाब बीच में कॉल आ गई दो, ये जो है दिलराज कहती है कि आज 12वां दिन है और माशाल्लाह बहुत फर्क होने लगा है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह पाक आपकी कंपनी को कामयाब करे, बहुत रिजल्ट वाले प्रोडक्ट हैं आपके। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये है जनाब टांग से मिलने वाली शहादतें जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आए दिन हमें यहाँ पर लोग कॉल करके बता रहे होते हैं। भाई मैं कहता हूँ कि जिसने जितने जल्दी केसन के ऊपर आंखें खोल ली ना उसने उतना जल्दी अपना फायदा हासिल कर लेना है। ठीक है जनाब, तो कल भी भाई एक भाई कह रहे थे और दिलराज कह रही हैं कि 12 दिन हो गए हैं और मुझे वाजे तौर पर फर्क आ गया है, मैं बहुत खुश हूँ और कंपनी को और मुझे दुआएं दे रही हैं। दिलराज बहुत शुक्रिया आपका और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखें आप, जब एक महीना आप वेट कम पेट कम को खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी स्मार्ट कितनी स्लिम हो गई हैं। ठीक है जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपसे मुलाकात होगी कल 4 बजे इंशाल्लाह, कल तक के लिए इजाजत अल्लाह।

0: शुक्रिया खान।
1: बस ना सारी सड़क के जो जी साहब
0: अल्लाह देवे सड़क तो आपको देवे अस्पताल देवे तो आपको हर शहर तो देवे अल्लाह पाक रोड देवे
1: आमीन आमीन भियो
0: तो प्रोग्राम आज की थी ऐसे सही
1: जी मैं नहीं की थी तेरे नाल
0: अरे ईद मुबारक ठीक है बेरे फिर आदि सही
1: बातो कई चीना का गाना सुना रहे हो या का सुना रहे हो सलाम थी होने
0: केरा गाना वो चीने दा चलो ठीक है बड़ी मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सराकी प्रोग्राम लोग रेडियो 88.4 दी आवाज सराकी प्रोग्राम लोग पूरा भिरा अशरफ जोशी ते आज जरा टॉपिक सर है वो टांक अते पूरे जरे इतने कलर बैठे उन्होंने मसले ते मसाइल किवें हल की सन क्यों हल नहीं थी ये मसले आखिर एक मैं अगले कॉलर के पास वैसा हूं अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम अल्लाह लकी
0: वालेकुम खैरियत है सही ठीक ठाक ही वे तबीयत सी अच्छी है
2: अरे जिला दी मेहरबानी है तो सब खैरियत है
0: सादिक भाई है या मैं भूल दा पिया
2: ये देख रहा भूले जो
0: बहु मेहरबानी खान की में आले खैरियत है
2: शुक्र है अल्लाह मेहरबानी
0: अच्छा पिछले दीवारा तुम्हारे शाद चक्कर लगे मेरा ते काम शुरू हुई रोड ते थोड़ा बड़ा शुरू पिए हाल है के खत्म थी गया है
2: मैं रोड के पास रहता ना मैं इंतजार के पास रहता हूं अपने काम के पास
0: अच्छा तो वक्त का चक्कर लाया करना शहर वाला का पता किधर का रोड बनदा पे नहीं बनदा पिया
2: थोड़ी बार चक्कर लग दे के टांग दो आवना पर महीने के बाद जाऊं
0: अच्छा ये जो मसले मसाइल हिन टांग के अंदर क्यों हल नहीं थीने पे
2: वैसे तो साथ में इनते उनते हले वदे होने ना
0: मसलन की में इनते उनते हले वदे होने
2: बहु मेहरबानी
0: खान बहुत बहुत शुक्रिया

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक एक दफा वाला सराकी प्रोग्राम। सराकी प्रोग्राम वस्ते लोको इच तुको वाला खुश आमदीद आदे हैं, वेलकम आदे हैं सही अमन रेडियो 88.4 दी आवाज दे रहे तुहारे नाल मुखातिब सही। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जो साहब।
0: जी जी
1: आपका अर्ज लेना थी। हां
0: जी जी,
1: मैं कि मेरा सामी ही नहीं सामी ना।
0: जी जी बिल्कुल
1: ब्लू गाली के मेरे पर तस्दीक करें ना थी। हां
0: जी बिल जी सर,
1: एक तो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह के
0: बेशक सही बेशक,
1: बाकी इंद बाद लफ्ज ना जितनी तेरे प्रोग्राम तारीफ करे ना लफ्ज ना तारीफ करे, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ना के म्यूजिक में चोन लिए थी तुम्हारे वते जरा पुन्नो नहीं करेगा।
0: ठीक है सही, ठीक है जरूर
1: बहुत मेहरबानी।
0: उम्मीद है कि लिसनर जे रहे गाल को जरूर बिल जरूर समझ गए हुसैन। 09635114488 साडा कॉलिंग नंबर इंदे उते आके तुसा सर नाल मुहब्बता वंडे सो। एक विरा तौला इस खेलवी दी फरमाइश ये रहे कि चीज सब्जी मंडी को कोशिश करने के तौला इस खेलवी को असा जरूर दे रहे अपने प्रोग्राम में झा दे तुसा आ सकदे 09635114488 दे उते दे दे देखा सा नाल अगले कॉलर कौन हिन अते केर जात हिन। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहम्मद अशरफ जोशी साहब, प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम
1: जोशी साहब, जबरदस्त प्रोग्राम आज तवा जुमे दी दीगर को सजाई पावे जी।
0: तोड़िया मेहनत सही किवें आले खैरियत है?
1: जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है जी। फास किला तो सोसाइटी रे जी।
0: अल्हम्दुलिल्लाह सही, अल्हम्दुलिल्लाह चंगे खैर खैरियत है।
1: जबरदस्त जबरदस्त प्रोग्राम इस बस आ गए सुन ले पैसे सके बस कॉल ना करे जो सारी जाते को भी कॉलर करे चा तो सा को मजा आवे है।
0: तोड़ी कॉल दा सा को इंतजार जो होने बात
1: असा लोगों को बस नंबर दी के दे दी लोग हिस्सा गिने चा अच्छी गाल है जी।
0: बहुत मेहरबानी सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक तो हमेशा खुश रखे सही।
1: बस जबरदस्त बस जरा एक हम पहले जरा तोले दी गाल करके जी मेरा तोले दे गांव लोग अच्छी गाल की के सही अच्छी गाल की के आजकल दौर जी यानी कि लीडर को आज अपना हक मांगना चाहिए है।
0: बेशक
1: हक की गाल करनी चाहिए
0: बेशक।
1: मैं तो ये कहना पे बस दो लफ्ज जो सात लफ्ज चाहिए कहना पे कि ओ जमाना गुजर गया पुराना और सिर्फ दो गालियां का परहेज करो। एक जी जी ते जी हाजी साहब ते जी खान जी ते जी हाजी साहब ते जी खान जी। मैं तो कहना ये लफ्ज छोड़े अपना हाथ बिल्कुल वज गज के मांगो। अगर शहर के नौकरी आ दिए जेरा मतलब है पूरा अंदाजी की दीवानी गरीब अमीर को एक नजर से दिखा वाने तीन इंशाल्लाह अल्लाह ताला राजी की।
0: बहुत मेहरबानी सही, बहुत मेहरबानी।
1: बहुत मेहरबानी।
0: वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।

0: आ सकते हो। सारे कॉलिंग नंबर 09635114588 आखिरी कॉलर में चाहसा तो उनके बाद जो है प्रोग्राम का मैं इख्तिताम कर सकूँ, क्योंकि सारे स्टूडियो इंजीनियर बिलाल भाई जो है पहुँच चुके हैं, घड़ी थी जो है टक टक जो है मजीद इजाजत नहीं दे दी तो इंशाल्लाह प्रोग्राम को समेटने की कोशिश कर सूँ। आखिरी कॉलर कौन है सी सारे नाल 09635114588 सराइकी प्रोग्राम वसते लोग सुनते पे वे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम, मेरा खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब इन सारे नाल
1: जी? गरम आबाद जो राम जिलानी।
0: राम जिलानी साहब को वेलकम थी गया प्रोग्राम में, साथ बिस्मिल्लाह लाख बिस्मिल्लाह।
1: बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी सुनी मेरे पास जई पे बैठे रेडो आखिर ते बस किस्मत है लग गई घंटी हुन आन की ते
0: बड़ी मेहरबानी। टाइम जे रहे वो मुख्तसर है गरम मोहब्बत दे अंदर जे रहे मौजूदा हुकूमत ने कोई काम कीते या नहीं कीते?
1: नहीं काम कीते, काम करन ने हुकूमत आजकल
0: ये क्या दा पे सही
1: ठीक
0: है बहुत मेहरबानी खान, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम जो है बिल्कुल खत्म थी पे, घड़ी की सुई जो है असा को मस्जिद इजाजत नहीं देनी कि सारा जो है तुहाडे नाल रबता रहे तो सराकी प्रोग्राम वास्ते लोग तो सुनने पे अपने स्टूडियो अपने मेजबान अशरफ जोशी दे नाल। अच्छा दोस्तों, जिला टांग दे तरक्की दे बुनियादी मसाइल दा हल जरे बहुत जरूरी है ते पहले नंबर ते जरे दूजे नंबर ते पानी दी किल्लत को दूर करने वास्ते नए टू वेल लगन ते पानी ज़खीरा करने दे मनसूबा ते कम होने चाहिए ते वाटर सप्लाई जरी लाइन है उन्हां दी मुरम्मत जरी है बिल्कुल जरूरी है। इन्हें नाल नाल बिजली की फरहमी को बेहतर बनाया वे, गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया वे, तो अमन जरा है वक्त की अहम जरूरत है, तो बिजली चोरी की जी है रोकथाम जरूर की वे, तो नए ट्रांसफार्मर मुरतब किए वन, अमनो अमान जरा है तरक्की बुनियाद है, तो पुलिस के गश्त भी जरा इजाफा जरूरी है, आवाम तो पुलिस के दरमियान जरा है तावन ये बढ़ाया वे, तो जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुअसर कार्रवाई की वे, इन सफाई का निज़ाम जरा है बेहतर किया वे, क्योंकि सफाई निज़ाम है। टाइम बिल्कुल खत्म है, अपने मेजबान अपने भिरा अशरफ दोशी को दे सो इजाजत, जिते रहो आबाद रहो तो खुश रहो, हंसते रहो तो वसते रहो, तो छोड़ी वे तो अताउल्ला इस आखिर भी दे इस गीत के।

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
3: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल दे, अवेलाजी सुनत अमल दे।
4: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो, ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो।
3: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ, मायूसके गई माँ। अलशिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नुरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे, तरला सकवले शे।
4: और दोनों मालूमात दे पारा पदक नंबर काल कवले शे
3: 0319-55-23-404।